अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रा नंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, प्रातः

0: संत बड़े परमार्थे वेद धरे अवधूत राम नाम के गर्जना भागराज अवधूत श्री सीता नाम नाम महाराज की श्री राम लला भगवान की
1: जय
0: श्री हनुमान देव महाराज की
1: जय
0: जय श्री राम
1: जय
0: जय जय श्री राम
1: जय
0: जय श्री राम नमः पार्वती पदये हर

श्री गोविंद गीता अध्याय 18 है, मोक्ष सन्यास योग। श्री मद्भगवत गीता के अंतिम एवं सबसे बड़े अध्याय में इस संवाद का सारांश है। अर्जुन सन्यास व त्याग के विषय में जानना चाहता है। श्री भगवान कहते हैं कि देह कष्टों से भयभीत होकर कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म के फल का त्याग ही त्याग का मर्म है।

प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर श्री कृष्ण कर्ता, धृति, ज्ञान, कर्म एवं सुख आदि का विस्तृत विश्लेषण करते हैं।

तत्पश्चात श्री कृष्ण परम गुह्यतम वचन कहते हैं कि हे कौन्ते, तुम मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही पूजन करो, मुझे ही नमस्कार करो, वह मेरे भक्त बन जाओ, सभी धर्मों का परित्याग कर मात्र मेरी ही शरण में आओ। मेरा यह वचन सत्य है कि तुम सभी पापों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त करोगे।

श्री कृष्ण इस महान संवाद के पठन श्रवण एवं वाचन का महत्व तो बतलाते हैं। वह अर्जुन से पूछते हैं कि इस दिव्य संदेश के बाद क्या तुम्हारा मोहजन्य अज्ञान नष्ट हुआ? अर्जुन का उत्तर सकारात्मक है। संजय, धृतराष्ट्र के समक्ष इस दिव्य संदेश व भगवान के दिव्य विश्व स्वरूप को स्मरण करता हुआ रोमांचित होकर कहता है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण व श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, वहां नीति है, ऐश्वर्य है, धर्म है, वह उस पक्ष की विजय सुनिश्चित है।

श्रद्धालु प्रभु भक्तों, गोपाल नंदन दुहते जिनको उपनिषद सब गऊ समाह, पार्थ वत्स हर साधु भक्ता, गीतामृत है दुग्ध महान। श्री हरिमुख से उद्घोषित इस मधुर वाणी का आपने रसा स्वादन किया। इस दिव्य संदेश के पठन, वाचन, स्मरण एवं श्रवण का लाभ अलौकिक है। शास्त्रों में कहा गया है कि पवित्र गीता शास्त्र करे जो पठन प्रेम से युक्त हो, प्राप्त करे वो विष्णु धाम को भय शोकों से मुक्त हो। सचमुच गीता सुवाचन व श्रवण परमेश्वर की अनन्य भक्ति का सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि मंत्र एक है नाम उसी का, कर्म एक है उसकी सेवा, शास्त्र एक है गीता जिसकी, एक देव की सुख है देवा। आइए इस सर्व मंगलमयी, सर्व अर्थमयी, सर्व धर्ममयी, सर्व शास्त्रमयी, स्वयं परमेश्वर की प्रतिनिधि स्वरूपा श्री मद्भगवद गीता की प्रेम पूर्वक आराधना करें।

महाकाल। विश्व की उत्पत्ति, उसके विकास और परिवर्तन का मैं साक्षी रहा हूं। मैंने ही सरिताओं को सागर यात्रा के आरंभ में शिवास्ते पंथाः संतु के आशीष दिए हैं। नदी जो कि स्वभाव से तरल उर्मिल और वत्सल है, तथा महाभारत कार ने जिसकी विश्वस्य मातर कहकर पूजा की है, ऐसी एक नदी उसका आज स्मरण करता हूं।

युग में वो कृतवती त्रेता युग में गिरी कर्णिका या मणिकर्णिका द्वापर में विधुमती चंदना या चंदनावती और कलयुग में

0: सा भ्रमती
1: विंदन महाकाल कैसे स्मरण किया मुझे?
0: पल भर रुक जाओ, तभी तो कहूँ ना।
1: आप भी कब रुके हैं? बहते रहना, यही तो हम दोनों का स्वभाव है ना? चलिए बातें करते करते साथ चलते हैं।
0: तुम्हें देखता हूँ और गहराई में जाता हूँ तो अतीत जीवंत हो जाता है। 88,000 ऋषियों ने आपके तट पर तपस्या की है।
1: यह मेरा परम सौभाग्य है प्रभु।
0: आप काश्यप गंगा के नाम से भी लोक हृदय में विराजमान हैं और फिर आपकी मुक्त धाराएं अरण्य में होकर आनर्थ और श्रभ कहे जाने वाले आज के मेवाड़ और गुजरात में बहने लगी।
1: हाँ प्रभु, और अरावली की गिरिमाला में छलांग भरने से डरती हुई मैं इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी होकर काले पहाड़ से निकल पड़ी। ऐतिहासिक नगरी उदयपुर राजस्थान के जिला परिषद के प्रमुख श्री भैरवलाल कारनोट भी मेरे बारे में कुछ यही कह रहे हैं।
2: राजस्थान के अंदर लगभग 44 किलोमीटर के अंदर का पानी साबरमती में जाता है, जिसको साई और वाकल दो नाम से नदी पुकारी जाती है। साई नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका पानी जवे बांध को जाता है, जो पीने के उपयोग और उस इलाके में काम आता है। बाकी पानी सारा बह करके साबरमती में जाता है और जो हिस्सा हमारे राजस्थान में से निकल रहा है उसके किनारे पर आदिवासी और गरासिया दो जाति के लोग विशेष तौर से बसते हैं और ये इनका पानी का उपयोग लिफ्ट करके चाहे वो पंपिंग सेट से हो, चाहे इलेक्ट्रिक पंप सेट से हो, चाहे रेंट से हो, चाहे चरस से हो, उसका उपयोग अपने जीवन को खाने पीने की वस्तु और एग्रीकल्चर खेती वगैरह करते हैं, जिससे अपना भरण पोषण करते हैं। इसी के साथ इस इलाके में अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और इसमें बीच बीच में पोखे जा गए हैं, तो विशेष तौर से 3/4 हिस्सा जो इसका क्षेत्रफल है, 3/4 हिस्सा टोटल फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट काफ़ी घने थे लेकिन अब काफ़ी डैमेज हो चुके हैं और नए फॉरेस्ट लगाने की काफ़ी कार्य हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्दी ही ये इलाका वापस आपके पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा हो जाएगा।
1: कृष्ण भक्ति में लीन ऐसी मीराबाई की चरण धूलि सिर पर चढ़ाकर मैं बाप्पा रावल, महाराणा प्रताप तथा भामाशाह के शौर्य एवं औदार्य की कथाओं को मन में रखते हुए आगे बढ़ी तो देखा मेरे किनारे पर असंख्य साबरों का वास।

0: यह आ गई नदी सेन, ये मेरा प्रथम संगम, और अब आएगा स्वदेश।
1: हाँ, यानी कि साबर कहाँ था?
0: वही देलवाड़ा गांव के पास, गोगुंडा के गणेश के आशीर्वाद से पावन

वाकल ने मेरा स्वागत किया। विशाल जलराशि युक्त वाकल से मिलने के बाद ही मेरी देह बदली।

0: गुजरात से दक्षिण तट पर बनासकांठे के जंगलों का दांता प्रदेश और वाम तट पर ब्रह्मा जी का महिमावान खेड़ ब्रह्मा विस्तार, दोनों ही आदिवासी प्रदेश। दांता के सणाली आश्रम की शिक्षा प्रणाली यानी आदिवासियों के जीवन परिवर्तन की पगडंडी।
1: हमारा नाम सुमेश गंभीर सिंह सोलंकी, प्रमुख तालुका पंचायत दांता, जिला बनासकांठा।
2: अध्यक्ष तालुका पंचायत दांता, जिला बनासकांठा। दांता तहसील के पूर्व विभाग में पर्वतीय विस्तार है, वहाँ अधिकांश आदिवासी लोगों की बस्ती है। आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है। दांता तहसील में साबरमती के तट पर सोनाली आश्रम की स्थापना 1957 में की गई थी। इससे पहले आदिवासियों की स्थिति बहुत कंगाल थी। अब शिक्षा और खेती के क्षेत्र में हम आदिवासियों की स्थिति बहुत ही अच्छी है।
3: माकड़, चंपा और हड़ाद के चूने के पत्थरों की खनिज संपत्ति से मेरे तट पर सीमेंट उद्योग का श्री गणेश हुआ। ये तो बिल्कुल आज ही की बात कही जाएगी। खेरोज के पुल के नीचे स्नान करते हुए यात्रीगण और मेरे पट को हरियाला रखने वाले खरबूजे और टमाटर की बाड़ियों की बात किए बिना तो आगे कैसे बढ़ा जा सकता है।
4: रावर शंकर भाई, रेवा भाई, गांव खेरोज ना वतनी से साबरमती में।
2: मैं रावल शंकर भाई, रेवा भाई, खेरोज गांव का रहने वाला हूँ। साबरमती नदी के अंदर सब्जियां उगाने का व्यवसाय करता हूँ। टमाटर, बैंगन, लौकी जैसी सब्जियां उगाते हैं और इससे हमारा गुजर बसर कर लेते हैं। हमारे पूर्वज भी यही किया करते थे और आज तक हम भी यही काम कर रहे हैं। हम ये सब्जियां लेकर खेड़ ब्रह्मा जाते हैं और उन्हें बेचकर अपना पेट पालते हैं। मेरा नाम सीवी। सब्जियां और खरबूजे तरबूज उगाकर 2-3 हजार रुपये कमा लेते हैं और बच्चों का पेट पाल लेते हैं। हम जो कर रहे हैं वही काम हमारे बच्चे भी करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती। हम गरीबों की ओर कोई देखता तक नहीं तो नौकरी का प्रश्न ही कहाँ उठता है। साबरमती ने जो कुछ बोया है वो उग आए तो हमारा गुजरान चल जाएगा, पर फसल अच्छी न हुई तो फिर हमारा तो ईश्वर ही है।
0: और उस पार साबरकांठा का पोशीला। यहाँ आपका पथरीला गोल

वैसे आदिवासियों ने आपके दोनों किनारों को जीवंत रखा है। आगे जाने पर खेड़ब्रह्मा के लांक, इधर के मारवाड़ तथा दांता के विदलासन के पास आपको

0: खजुराहो तथा भुवनेश्वर के तुल्य मंदिरों के अवशेष आज भी भव्य अतीत की प्रतीति कराते हैं।
1: आपके उत्तरी प्रदेश में भारी वर्षा होने पर आप छलक जाती और आपका पानी तट पर स्थित प्रदेशों पर फैल जाता। इसी बात को ध्यान में रखकर खेरालू तहसील के धरोई गांव में आप पर बांध बनाया गया है।
2: धरोई डैम जो यहाँ जो देख रहे हैं वो धरोई डैम का जो विभाग है यहाँ का मैं सारे पाला जी रुको यहाँ मैं सेवा बजा रहा हूँ। मेरा नाम है दिलीप पंचाल। ये नदी है साबरमती नदी अरवली हिल्स में निकलती है। ये धरोई डैम बनाने से हमारे 140 गांवों को असर हुई है। ये सब लोगों को हमने पुनर्वाधिवृत किया है दूसरी जगह पर। ये डैम बनाने से कुल मिला के 55,000 हेक्टर की वो प्लानिंग है। इसके अलावा अहमदाबाद को हम पानी देते हैं, AEC को पानी देते हैं, जी रोड को पानी देते हैं, गांधीनगर में और गांधीनगर टाउन में भी पानी देते हैं।
1: वो दूर दिखाई देता है इबेरियागढ़।
0: सातवीं सदी में यहाँ चीनी प्रवासी ह्यूएन त्सांग आया था। आज इबेर अपने ग्रेनाइट पत्थर और खराही के व्यवसाय से मशहूर है। एकलारा महादेव के दर्शन कर आगे बढ़े इससे पहले इस प्रदेश में पैदा होने वाले गुजरात के मूर्धन्य कवि श्री उमाशंकर जोशी, उपन्यासकार पन्नालाल पटेल को याद कर लें।
1: पूरा साबरकांठा कपास का घर माना जाता है। आपके नाम से जुड़ी साबर डेरी और यहाँ की सहकारी प्रवृत्ति को कैसे बुलाया जा सकता है? ये रहे साबर डेरी के अध्यक्ष हेमा भाई पटेल।
3: साबरमती के किनारे पर साबरकांठा जिला में सहकारी प्रवृत्ति द्वारा 10 सालों को अंदर 12 तीन फैक्ट्री डाली गई है। इसमें से कपास का उत्पादन किया जाता है और मार्केटिंग से अच्छी तरह की जाती है। इसकी इससे खरीदों को सारी आमदनी मिलती है। आमदनी का अंदाजा लगाया जाए तो 100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। जो कपास के सहकारी से हम सब लोग सक्सेस हुए इसके मुताबिक हमने बिजनेस को अच्छी तरह कचरा करने का निश्चय किया। इसी फाइव में हमने सबसे पहले दूध का धंधा चालू किया। 1300 जितनी मंडियों हमने बनाई हैं। वो संगठन द्वारा हर एक गाँव में से हर रोज 6 लाख लीटर जितना दूध इधर आता है। पूरा मिलकर हमने 40 करोड़ का लाभ खरीदों के लिए लिया है अमरीदी के पास से। और साबरकांठा जिला का एक अच्छा उद्योग यहाँ सहकार संघ द्वारा आपके सामने मौजूद है।
1: सामने किनारे पर विजयपुर तहसील का ख्यातनाम जैन तीर्थ महुदी

0: महुड़ी के पास ही खड़ाओ का वणिकों का सुप्रसिद्ध यात्रा धाम यानी कोटियार्क का मंदिर। इस स्थान पर पहले एक बौद्ध नगरी थी।
1: इस परम धाम का विशेष महत्व

0: वन के बाद ही सावर आप साबरमती बनती हैं, एक महान नदी का रूप धारण करती हैं। यहाँ 40 मीटर ऊंची चट्टानें, घनी बंदराई और कराल कोहर आपके प्रवाह को अनोखा सौंदर्य प्रदान करते हैं।
1: यहाँ से आगे वरसड़ा गांव में मुझे जर्जरी, सिरसरी तथा अमरवेल नदियाँ मिलती हैं। ये मेरा पांचवा संगम है।

0: होगी। और इससे पहले मेरे तट पर स्थित अमरापुर गांव की ग्राम भारती संस्था को देख लें, क्योंकि इस विस्तार का वर्तमान है ग्राम भारती। इसके बाद यहाँ के संचालक श्री मोती भाई चौधरी से सुने, यही उचित होगा, है ना?
1: ये गांधी ने जो बताया था राष्ट्र शिक्षा के बारे में, उद्योग के साथ शिक्षा, प्रमुख से भी अलग न हो शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी, और ऊंच नीच का जो भेद, जाति पाति का जो भेद है, श्रम करने वालों के प्रति जो ऊंच नीच का भेद है, इसको निर्मूल करना है तो सब बच्चे साथ में रह के, ऊंच नीच का कोई सवाल रहे नहीं, सब साथ में रहे और काम करते जाए और शिक्षा प्राप्त करे, ऐसा जो बुनियादी शिक्षा का ढांचा उन्होंने बताया था उसको नज़र में रख के हमने उत्तर बुनियादी का काम इधर ये संस्था करके शुरू कर दिया। हम साबरमती नदी के किनारे के पर बसे हुए गांव के साथ रहते हैं, तो साबरमती नदी ने जीवन दिया, इसके साथ साथ इस जमीन को हमने रिक्लेम करने का शुरू किया। लोग हंसते थे कि ऐसे जमीन में कैसे खेती हो सकती है और फिर से इस खेत कैसे बन सकते हैं, लेकिन आज सब देख के अचरज रह जाते हैं कि ऐसा हो के रहा है और अच्छी खेती भी हो रही है।
0: अपने प्राकृत्य से भारपुर तक मैं जंगलों तथा पत्थरों में भटकती रहूंगी। भारपुर से धरवई तक का मेरा प्रवास पथरीला और ढलाऊ है। मुझ में नहीं का गांधीर्य, तापी का सामर्थ्य या नर्मदा की भव्यता नहीं है।
2: और ये सामने दिखाई देती है गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अहमदाबाद यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर होगा।
0: हाँ, समग्र राज्य की राजकीय, आर्थिक तथा लोक कल्याण प्रवृत्तियों का केंद्र यानी गांधीनगर। मेरे किनारे पर स्थित इस आधुनिक नगरी के निर्माण नक्शे में फ्रेंच स्थपति ला कार्बूसो का असर दिखाई पड़ता है।
3: That Gujarat Stadium in the third test match between India and West Indies, the news is that West Indies are 87.
2: देखो, साफ़र देखो। खेल रंग लाया है। ये तो है गुजरात का मोटेरा स्टेडियम। गुजराती लोग खेल को दिमाग से खेलते हैं, पराजय को हंसकर स्वीकार कर लेते हैं और विजय को मुट्ठी में बरकरार रखते हैं।
3: Lloyd from picking up a single. Lloyd is on 36 and West Indies 88 for the loss of 3 wickets.
2: Sabar, यहाँ से आप अहमदाबाद की बन जाती हैं।
0: हाँ, और यहीं पर होता है मेरे अस्तित्व के अर्थ का आरंभ।

0: जगत ने महात्मा गांधी का नाम दिया। उन्होंने मेरे पश्चिम तट पर मेरे ही नाम से बसे साबरमती गांव में जग प्रसिद्ध आश्रम की नींव डाली और मेरे ही नाम से जोड़ा साबरमती आश्रम। आज इस नाम का उल्लेख करते हुए मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता है। बापू स्वयं साबरमती के संत कहलाए और मैं धन्य हो गई।
1: यहाँ आपको चंद्रभागा नदी मिलती है, यह आपका

0: आज का अहमदाबाद यानी किसी समय से आशा भील का आशावल, फिर आशावल समृद्ध कर्णावती बना। उस समय कर्णदेव इसका राजा, अहमदाबाद की नींव इसी सन 1411 मार्च की 34 तारीख को रखी गई। उसमें मुस्लिम संत शेख अहमद खत्री गंजबख्श की प्रेरणा रही, अहमद सा इसका बादशाह बना।
1: अहमदाबाद के निर्माण का प्रथम नमूना है भद्र का किला। मुस्लिम स्थापत्य में 100 खंभों वाली जामा मस्जिद, रानी महजियो, कला कारीगरी में अनन्य ऐसी सीधी सईद की जाली वाली मस्जिद, शाह आलम का रोजा तथा समग्र दुनिया को स्थापत्य कला की एक अद्भुत और आश्चर्यजनक भेंट देने वाली झूलती मीनारें मुख्य है।
0: साबरमती, आपके तट पर बसा अहमदाबाद व्यक्ति विशेषों से भी भारत भर में अनोखा रहा है। अहमदाबाद नाम देते ही बाबा माणिकनाथ, यहाँ के टकसाल में काम करने वाले ज्ञानी कवि अखा भगत, भारत के लोह पुरुष और किसी समय इस शहर के नगरपति सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष दादा साहेब मावलंकर, सबकी याद ताजा होती है।
1: इसके अतिरिक्त शीर्ष शिरोमणि कस्तूर भाई लाल भाई, विज्ञान विभूति डॉक्टर विक्रम सारा भाई और ऐसी असंख्य व्यक्तियों की याद हमें गौरवमय बनाती है।
0: अहमदाबाद में फिर से जैसे अंतरिक्ष का आरंभ हुआ। शेख रणछोड़ लाल ने 1859 में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की और देखते ही देखते अहमदाबाद का आकाश नीलों की चिमनियों से छा गया। समग्र भारत की राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक हलचल का केंद्र साबरमती आपका किनारा बना। यहीं से भारतवर्ष ने नए युग के आगमन की बधाई दी।
1: प्रभु, आप इतिहास की याद ताजा कर रहे हैं और मैं रोम रोम पुलकित होती जा रही हूँ। मेरे बालू पट पर 1930 की 8 मार्च के रोज आयोजित सभा में आजादी की लड़ाई का जुगल बजा। मैंने देशवासियों के मिजाज को पढ़ा, इतिहास को करवट बदलते देखा और 12 मार्च की दांडी कूच की अभूतपूर्व घटना महाकाल आपके सीने पर भी तो अंकित हो गई। कई कुत्तों की मौत मरूंगा लेकिन स्वराज लिए बिना आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प कर उस मुट्ठी भर हड्डियों वाले मानव ने जब दांडी यात्रा को यहाँ से पहला कदम उठाया तो पंथर काल देवता आप और मेरा जल दोनों थम गए थे ना।

ये है धौलसा तहसील के सरदवाला गांव के पास वाला टीला यानी लेथल। हरप्पन संस्कृति को सुरक्षित रखकर दब जाने वाली एक पुरातन नगरी जिसके उत्खनन से ईसवीसन पूर्व 1100 तथा ईसवीसन पूर्व 600 के इतिहास के बीच की एक टूटी कड़ी जुड़ गई और एक लुप्त संस्कृति पुनः प्राप्त हुई। वैठा के पास आपको मेसो माध्यम और खेदी को साथ लेकर वात्रक मिलती है। ये आपका सातवां और अंतिम संगम। खारी तथा हाथमती के साथ मिलकर आप सातों नदियों का संगम स्थान सप्तधारा तीर्थ भी कहा जाता है। साबरमती,

0: आप क्यों उतावली हो गई?
1: मेरे बहते पानी में जो देखा, जाना और भोगा, कुछ और आपने याद करवा दिया। बहना, बहाना और बसाना, यही है मेरा धर्म।

papá.

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि देवाधिदेव महादेव की आज्ञा पाकर कृतिकाओं ने कुमार कार्तिकेय को वापस कैलाश धाम भेज दिया। इस समाचार से दैत्यों में चिंता की लहर दौड़ गई। दैत्य माता दिति ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से तारकासुर की प्राण रक्षा का उपाय करने को कहा। विधि का विधान जानते हुए शुक्राचार्य ने कुछ भी ना कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। दिति क्रोधित हो उठी। कूटनीति का सहारा ले दिति ने तारकासुर की आसुरी प्रवृत्तियों को पुनः जागृत किया। देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। असुर पराजित हुए तथा शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके त्रिलोकी को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। प्रस्तुत है इससे आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, इससे तो यही कथन चरितार्थ हुआ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, न दिति तारकासुर की बुद्धि हरती, न वो युद्ध करता, न उसकी मृत्यु होती।
2: विप्रवर शौनक जी, आपका ये कथन यदि पूर्णतया सत्य नहीं तो असत्य भी नहीं है।
1: वो कैसे सूत जी?
2: आपने कहा कि यदि दिति तारकासुर की बुद्धि ना हरती तो वो युद्ध ना करता, मृत्यु को प्राप्त ना होता। यह पूर्णतः सत्य नहीं है। काल अपना समय और स्थान महाप्रभु के आदेश पर ही निर्धारित करता है। यदि दिति तारकासुर को ना उकसाती तो कोई अन्य इसका माध्यम बनता।
1: सूत जी, यदि मेरा कथन सत्य नहीं तो असत्य भी क्यों नहीं है?
2: परम ज्ञानी शौनक जी, जब काल ने निश्चित कर ही लिया हो तो कौन उसे बच सकता है? प्राणी अपने मन की संतुष्टि के लिए कहीं भी भागता फिरे, अंततः पहुंचेगा वहीं जहां काल ने उसे बुलाया हो।
1: अब सत्य कह रहे हैं सूत जी। अब ये बताएं।

0: कि तारकासुर के नाश के पश्चात काल ने क्या गति ली।
1: महाज्ञानी शौनक जी, तारकासुर के अंत के पश्चात तीनों लोकों में परमानंद का वास था। सृष्टि में शांति व्याप्त थी। स्वयं देवाधिदेव गृहस्थ जीवन का आनंद उठा रहे थे।
2: देवी पार्वती,
3: कहिए देव।
2: हमारी इन दोनों संतानों ने हम जैसे वीतराग तपस्वी को भी गृहस्थ आश्रम के महत्व और आनंद से परिचित करवा दिया है।
4: नारायण नारायण, ये आपने क्या कह डाला देवाधिदेव।
2: क्यों मुने नारद, ऐसा कौन सा असत्य निकल गया हमारे मुख से जिस कारण आपके अचानक दर्शन प्राप्त हुए हमें।
4: नारायण नारायण, असत्य और आपके मुख से? उस दिन तो त्रिलोकी ही विलुप्त हो जाएगी महाप्रभु। आया तो था शिव कुमारों के दर्शन करने, परंतु आपका कथन सुन मन कौतूहल से भर उठा, चरण यही ठिठक गए।
3: कैसा कौतूहल नारद मुनि?
4: देवी पार्वती, संपूर्ण त्रिलोकी जिनकी गृहस्थी है और उसके वासी जिनकी संतानें हैं, वो महादेव गृहस्थ आश्रम के महत्व और आनंद की बात अब कर रहे हैं।
2: मुने नारद, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, अन्य अनेक भी जानते हैं, परंतु उन अनेक के अतिरिक्त भी अनेकानेक हैं जिन्हें इस दैवी सत्य का अनुभव नहीं है। ये मात्र उनकी मान्यता ही है और अनुभव मान्यता को दृढ़ ही करता है।
3: परंतु देवाधिदेव, अनुभव के आधार पर मान्यताएं भंग भी होती हैं।
2: आप सत्य कह रही हैं देवी पार्वती, गृहस्थ जीवन के अनुभव से हमारी ये मान्यता भंग हुई कि जन कल्याण का कार्य मात्र वैरागी निष्काम और गृहस्थ बंधन से मुक्त रहकर ही संभव है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण हम तारकासुर का वध करने में अक्षम थे, परंतु महालोक कल्याण का ये कार्य हमारे पुत्र कार्तिकेय ने किया।
3: मुने नारद, अब से ही सृष्टि का नियम होगा, माता पिता के अपूर्ण कार्य उनकी संतानें पूर्ण करेंगी, ये उनका प्रथम कर्तव्य होगा।
2: अतः हम शिव गृहस्थ आश्रम को उतनी ही मान्यता प्रदान करते हैं जितनी ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और सन्यास को करते हैं। हर अवस्था का अपना महत्व और उपयोग होगा।
4: नारायण नारायण, आप धन्य हैं महाप्रभु और महादेवी आप भी। मानव जीवन के सुचारू संचालन के लिए आपने ये बहुत ही उत्तम नियम प्रतिपादित किया है, परंतु देवाधिदेव, आपका ये नियम पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय पर भी लागू होता है अथवा नहीं? ये
2: मुनि नारद, हम आपकी बात का तात्पर्य नहीं समझे।
4: भगवन, आपके दोनों पुत्र अब ब्रह्मचर्य की अवस्था पार कर चुके हैं। आपके द्वारा प्रतिपादित नियम के अनुसार तो अब उन्हें अगली अवस्था में प्रवेश करना चाहिए।
2: अगली अवस्था?
4: देवाधिदेव, आपसे कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने की कुचेष्टा करने के समान होगा, परंतु विनम्र निवेदन करने की अनुमति चाहूंगा।
2: कहिए ब्रह्मा पुत्र, आप हमारे पुत्रों के शुभ चिंतक हैं, हृदय का विचार हृदय में ना ही रखें, निर्भीक होकर कहें।
4: नारायण नारायण, महाप्रभु, किंचित पुत्र प्रेम में आप और महादेवी इस तथ्य से परिचित होकर भी अपरिचित रहना चाहते हैं कि दोनों कुमार
5: वयस्क हो चुके हैं।
2: मुने नारद, ब्रह्मा जी आपकी प्रशंसा व्यर्थ ही नहीं करते।
5: नारायण नारायण,
2: आप गंभीर से गंभीर विषय इतने सरल शब्दों में उठाते हैं कि दूसरे के मानस पर दृढ़ता से अंकित हो जाते हैं।
5: नारायण नारायण, महाप्रभु ये भी इस नारद को आप ही का आशीर्वाद है।
2: देवी पार्वती।
3: जी स्वामी।
2: ब्रह्म ऋषि का यह कथन अति विचारणीय है। हमारे पुत्र बड़े हो गए हैं।
3: धृष्टता के लिए क्षमा चाहती हूँ नाथ। ये प्रश्न अनेक अवसरों पर मेरे मानस पर भी कौंधा। माता हूँ, पुत्रों को क्षण क्षण बड़े होते देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है, परंतु आपके समक्ष ये विचार प्रस्तुत करते मैं झिझकती रही।
2: ऐसा क्यों पार्वते?
3: आपके भक्त वत्सल स्वरूप के दर्शन तो मैं चिरकाल से करती आ रही हूँ, परंतु संतानों के प्रति आपका वात्सल्य रूप देख मैं भी मुग्ध रह गई। स्वार्थवश इस छवि को तोड़ना ना चाहा। स्त्री हूँ, भावनाओं के अधीन हूँ।
2: देवी पार्वती, स्त्री की भावनाएं उसका बल होनी चाहिए, ना कि उसकी क्षीणता। स्त्री का एक धर्म और भी होता है।
3: जी।
2: समय समय पर पिता को उसके कर्तव्यों से अवगत कराते रहना। बताएं देवी, अब हमारा कर्तव्य क्या है?
3: देव, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होता है कि संतानों के बड़े होने पर उचित वर वधु ढूंढ उनकी गृहस्थी स्थापित करने में सहायता करना।
2: पहले किसका विवाह निश्चित किया जाए, पुत्र गणेश का अथवा पुत्र कार्तिकेय का? हमारे समक्ष दोनों ही समान हैं, दोनों ही विवाह योग्य हैं।
5: नारायण नारायण, देवादि देव, आपका ये सेवक किस दिन काम आएगा? मैं अभी जाकर पार्वती नंदन गणेश और शिव पुत्र कार्तिकेय की इच्छा जानने का प्रयास करता हूँ। देखें विवाह का इच्छुक पहले कौन है। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण।
6: प्रणाम ऋषिवर नारद।
5: वंश विस्तारक भव पार्वती नंदन गणेश।
7: मुनिवर मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए।
5: कुल दीपक भव पुत्र कार्तिकेय।
6: ये क्या मुनिश्रेष्ठ, आज आप हमें ये कैसे विचित्र आशीर्वाद दे रहे हैं? सदा तो आप हमें चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, विजयी भव इत्यादि के आशीर्वाद देते आए हैं, और आज?
5: गजानन, हमारे ये आशीर्वाद समय की आवश्यकता तथा आपके माता पिता की इच्छा का फल है।
7: समय की आवश्यकता, माता पिता की इच्छा? हम आपका तात्पर्य नहीं समझे ऋषिवर।
5: नारायण नारायण। पुत्रों, समय की आवश्यकता कहती है कि आप शैशव बाल एवं किशोरावस्था लांग चुके हैं, युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं, अतः वंश विस्तार आपका परम कर्तव्य बन जाता है, और यही आपके माता पिता की हार्दिक इच्छा भी है कि आपका विवाह कर दिया जाए।
7: परंतु हमारी तो ऐसी इच्छा नहीं है।
5: पुत्र कार्तिकेय, माता पिता की इच्छा पूर्ण करना संतान का धर्म होता है।
6: परंतु विवाह के पश्चात हम अपने अनुज से क्रीड़ा कैसे कर पाएंगे?
5: नारायण नारायण। गौरी नंदन, विवाह का ये अर्थ नहीं कि बाकी संबंध समाप्त हो जाते हैं। हर संबंध का अपना महत्व होता है, और पुत्र

0: गणेश, बाल क्रीड़ा सबको एक समय तक ही शोभा देती है। बड़े होने के साथ साथ दायित्व बढ़ते हैं और क्रीड़ा का समय कम होता जाता है, और फिर शीघ्र ही आपको क्रीड़ा के लिए नए साथी भी तो मिल जाएंगे। नारायण नारायण।
1: वो कैसे?
0: बाल गोपाल के रूप में।
1: नारायण नारायण, आप तो बहुत दूर की सोचते हैं प्रभु।
0: नारायण नारायण।
1: पहले मैं विवाह करूंगा।
2: नहीं भ्राता श्री, पहले मैं विवाह करूंगा।
1: मैं ज्येष्ठ हूँ।
2: मैं शिव पुत्र हूँ।
1: मैं शिव गणों को परास्त करने वाला हूँ।
2: मैं महाबलशाली तारकासुर का नाशक हूँ।
1: मैं अग्र पूज्य हूँ।
2: मैं भी सबका वंदनीय हूँ।
3: शांत शांत हो जाओ पुत्रों, तुम दोनों ही हमारे पुत्र हो। जैसे षडानन हमें प्रिय है, वैसे ही गणेश भी हमें प्रिय हैं।
4: तुम दोनों समान बलशाली और वंदनीय हो।
0: नारायण नारायण। प्रभु, तो ये कैसे निश्चित किया जाए कि इन दोनों में से पहले विवाह का अधिकारी कौन है?
4: पुत्रों।
2: जी पिताजी।
4: पुत्रों, तुम दोनों हमें एक समान प्रिय हो। तुम में से किसी एक पर हमारा विशेष अनुग्रह नहीं है। हमारे लिए यह निर्णय ले पाना कठिन हो रहा है कि पहले किसका विवाह किया जाए। इस स्थिति से निपटने का हमें एक ही उपाय सूझ रहा है।
2: आज्ञा करें पिताजी।
4: आप दोनों को परीक्षा देनी होगी।
3: परीक्षा? कैसी परीक्षा देवाधिदेव?
4: पार्वती, हमने निर्णय लिया है कि हमारे ये दोनों पुत्र पृथ्वी की परिक्रमा करें। इनमें से जो भी पहले लौटेगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा।
1: हमें स्वीकार है।
2: यदि मैं एक वर्ष में लौट आया तो?
1: यदि मैं 6 मास में लौट आया तो?
2: मैं 3 मास में लौट आया तो?
1: मैं क्षण भर में लौट आया तो?
0: नारायण नारायण। प्रतिस्पर्धा आरंभ होने से पूर्व वाक प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई।
3: पुत्रों, पहले जाओ तो अपने पिता द्वारा निर्धारित परीक्षा में भाग तो लो।
1: नहीं माते, पहले वचन दे। यदि मैं पहले लौटा तो मेरा विवाह पहले होगा।
3: वचन दिया
1: तो हम जाए माते?
3: हाँ पुत्र।
1: अपने वचन का स्मरण रखिएगा।
3: हाँ पुत्र, स्मरण रहेगा।
2: माते, पिताजी, आपकी चरण धूली ले हम प्रस्थान की अनुमति चाहते हैं।
5: हमारा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है।
0: नारायण नारायण नारायण।
1: अरे अनुज, कार्तिकेय तो तीव्र गति से प्रस्थान कर गए, हम तो पीछे रह गए। अब हम क्या करें? इस भारी भरकम शरीर के कारण पृथ्वी की परिक्रमा तो क्या हमें कोस भी नहीं चल पाएंगे। क्यों ना अपनी सवारी मूषक की सहायता ली जाए।
6: नहीं, उनकी गति तो अति मंद है।
1: अब हमें पहले विवाह सुख कैसे प्राप्त होगा? हम तो अपने अनुज से ही हार जाएंगे, सब हम पर कटाक्ष करेंगे।
4: पार्वती, पुत्र गणेश अभी तक यहीं विराजमान है।
3: हाँ स्वामी, किन्हीं गहन विचारों में डूबे हैं। पुत्र गणेश क्या सोच रहे हैं?
1: उपाय
3: उपाय।
1: हाँ माते, हम सोच रहे हैं कि यदि हम आपकी पूजा करने के पश्चात परिक्रमा करें तो हम अवश्य विजयी होंगे।
0: नारायण नारायण। सावधान महाप्रभु, किसी नई परिभाषा की संरचना होने जा रही है।
1: माते, पिताजी, ये लीजिए, मैंने आप दोनों की पूजा करने के लिए ये 2 आसन स्थापित किए हैं। आप इन पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए।
5: लो पुत्र,
1: हम बैठ के। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते नमः।
0: नारायण ना।

0: अरे ये क्या,
1: गजानन ने तो जाप करते हुए स्वयं देवाधिदेव तथा महादेवी की 7 बार प्रदक्षिणा कर डाली।
2: हे माते, हे पिताजी, अब आप मेरा विवाह कर दीजिए।
3: विवाह? परंतु पुत्र गणेश।
2: माते, आपने वचन दिया था कि यदि मैं पहले लौटा

0: आपके द्वारा प्रतिपादित वेद शास्त्र क्या ये नहीं कहते कि पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति ही उसका तीर्थ उसका संसार होते हैं? यदि वे वेद शास्त्र सत्य हैं, तो मैंने आप दोनों की 7 बार परिक्रमा कर संसार की 7 परिक्रमाएं पूर्ण कर ली हैं। आपने तो मात्र 1 परिक्रमा करने को कहा था।
1: पुत्र गणेश, जिसके पास बुद्धि होती है वही बलवान होता है, जिसके पास बल होता है वही विजयी होता है। पुत्र, वेद शास्त्र में और पुराणों में पुत्र के लिए जिस धर्म पालन की बात कही गई है वो तुमने पूर्ण की है। मुने नारद।
2: आदेश महाप्रभु।
1: जाइए, ब्रह्मा जी से निवेदन कीजिए कि हमारे इस अति योग्य पुत्र के लिए सुयोग्य वधु का चयन कर इसका विवाह संपन्न करवाएं।
2: जैसी आज्ञा भगवान। नारायण नारायण नारायण।
3: और विप्रवर सूत जी, परमपिता ब्रह्मा ने शिवजी के आदेश का पालन करते हुए प्रजापति विश्वरूप की 2 सुंदर पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि से गजानन का विवाह करवा दिया,
4: तो महाभाग सूत जी गिरिजानंदन भी गृहस्थ हो गए।
3: हाँ शौनक जी, काल की नियति से सिद्धि से क्षेम तथा बुद्धि से लाभ नामक 2 दिव्य पुत्रों की उत्पत्ति हुई।
4: सूत जी, कुमार कार्तिकेय का क्या हुआ? क्या वे पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण नहीं कर पाए?
3: शौनक जी, जब कुमार कार्तिकेय परिक्रमा करके लौटे तब तक ये सब कुछ घटित हो चुका था। उन्हें भ्राता के विवाह और पुत्र उत्पत्ति से सुख भी पहुंचा और दुख भी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे आजन्म कुंवारे ही रहेंगे। माता पिता के रोकने पर भी वे क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने चले गए।
4: अच्छा, तभी शिव लीला में कहीं कुमार के विवाह का वर्णन नहीं है।
3: हाँ शौनक जी, और उसी दिन से सृष्टि में कुमारत्व अर्थात कुंवारेपन की परंपरा पड़ गई।
4: फिर क्या हुआ सूत जी?
3: कालचक्र अपनी गति से घूमने लगा। चारों ओर सुख और प्रसन्नता का वास था जो दैत्य माता दिति को खल रहा था।
5: तारकासुर की मृत्यु के पश्चात दैत्य साम्राज्य विघटित होता जा रहा है। हमसे थर थर कांपने वाले प्राणी हमारे सामने से यूं निकल जाते हैं मानो हमारा कोई अस्तित्व ही ना हो। यह अपमान, यह अनादर असहनीय हो उठा है। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सृष्टि में अपनी उपस्थिति दर्शानी ही पड़ेगी, परंतु कैसे दिखती, कैसे करोगी? ये किससे मंत्रणा करूं? शुक्राचार्य को तो अपमानित कर दैत्य गुरु पद से हटा चुकी हूं। हाँ, सेनापति, एकमात्र सेनापति ही विश्वास पात्र रह गए हैं। दैत्य सेनापति।
6: आज्ञा दैत्य माता।
5: एकमात्र आप ही रह गए हैं जो आज भी हमें दैत्य माता कह के संबोधित करते हैं। पहले तो त्रिलोकी में इस दैत्य माता की जय जयकार गूंजा करती थी।
6: दैत्य माता, ये तो समय का फेर है। अच्छे और बुरे काल तो आते जाते रहते हैं। धैर्य रखें, ये बुरा काल भी समाप्त हो जाएगा।
5: कैसे, कब, कब हमारा शासन पुनः स्थापित होगा? कब इंद्र की माँ अदिति हमारे समक्ष नतमस्तक हो, पुनः अपने जीवन की भिक्षा मांगेगी? कैसे हंस हंस कर दुलारती है वो

0: अपने पुत्र इंद्र को हमारा कलेजा छलनी हुआ जाता है। दैत्यों की जयकार सुनने के लिए हमारे कान तरस गए हैं।
1: धीरज रखें दैत्य माता, आपके तीन प्रपौत्र अवश्य आपकी इस अभिलाषा को पूर्ण करेंगे।
0: कौन? तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष? वो तो हमें ही अपनी पिता की मृत्यु का दोषी ठहराते हैं। कहते हैं न हम शुक्राचार्य का अपमान करते न ये सब होता, परंतु हम शुक्राचार्य की बात कैसे मान लेते, कैसे उस शिव से क्षमा प्रार्थना करते?
1: दैत्य माता, दैत्य नीति तो यही कहती है कि अपने लाभ के लिए किसी की चाटुकारिता करना असंगत नहीं होता। लाभ और बल प्राप्त हो जाने के पश्चात उसी व्यक्ति को ठोकर मारी जा सकती है जिससे कभी क्षमा मांगी हो।
0: तो आपका क्या मत है दैत्य सेनापति, हमें क्या करना चाहिए?
1: दैत्य माता, आपके समक्ष मैं बहुत तुच्छ हूं, परंतु एक निवेदन करना चाहूंगा।
0: कहो दैत्य सेनापति, निसंकोच कहो।
1: समय की मांग कहती है कि शुक्राचार्य को पुनः दैत्य गुरु का पद सौंप दिया जाए। इससे तारकासुर के तीनों पुत्र भी प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ भी हो, शुक्राचार्य दैत्यों के हितैषी हैं, वे अवश्य ही दैत्य उत्थान का कोई मार्ग खोज निकालेंगे।
0: आप उचित कहते हैं दैत्य सेनापति, है तो शुक्राचार्य ऋषि ही, देवताओं की भांति ऋषि भी क्षमा दान देते हुए गर्व का अनुभव करते हैं, भूल जाते हैं कि क्षमा हृदय से मांगी जा रही है अथवा स्वार्थवश। हम स्वार्थवश अवश्य उनसे क्षमा मांगेंगे दैत्य सेनापति, अवश्य क्षमा मांगेंगे।
2: महाभाग सूत जी, ऐसे तो दैत्य माता दिति ने यह तथ्य स्वीकार कर ही लिया कि समय बहुत बलवान होता है, वो किसी से कुछ भी करवा सकता है।
3: हाँ महाज्ञानी शौनक जी, समय का फेर कुछ ऐसा ही होता है, क्षण भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है, और फिर समय के अनुसार रंग बदलना तो दैत्य नीति ही थी। दैत्यों ने सदा भगवानों से वरदान प्राप्त कर उनका उपयोग देवताओं के विरुद्ध ही किया।
2: परम पिता द्वारा प्रतिपादित सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण की परिभाषा भी तो यही थी सूत जी, और इन गुणों के आधार पर ही तो सब जीवों का चरित्र निर्माण हुआ था। फिर राक्षस कैसे अपने गुण त्याग देते, उनको तो उलट पलट करते ही रहना था।
3: आपका कथन पूर्णतः सत्य है शौनक जी, और उथल पुथल की इस नीति ने असुरों को एक बार फिर सत्ता के कगार पर ला खड़ा किया।
2: वो कैसे सूत जी?
3: इसका विस्तृत वर्णन अगली बार करेंगे शौनक जी।
2: जैसी आपकी इच्छा सूत जी।
4: श्रोताओं, शिव महिमा का आज का प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता चतुर्थ खंड के 20वें अध्याय तक से लिया गया था।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचाकर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

हे महादेवी, अपनी घंटा जगत मा एना नाद थी व्याप्त थई ने दैत्यों ना तेज ने नष्ट करे। हे महादेवी, जेम पोताना पुत्रों नी माता रक्षा करे, एम ए घंटा अमोने पाप माथी बचाओ, रक्षा करो। चंद्र घंटा शब्द नो अर्थ चंद्रहा घंटायाम यस्यात्सा एम थाई, इतले के जेमनी घंटा मा आह्लादकारक चंद्र से ए देवी चंद्र घंटा। ये तो जाणीतू छे કે ઘંટનો ધ્વનિ દેવ દેવીઓને પ્રસન્ન કરતો હોય છે, આસુરી ભાવોને ભગાડી દે છે। બૌદ્ધ જૈન ઈસાઈ ધર્મસ્થાનોમાં ઘંટનો ધ્વનિ સુમંગલ મનાય છે એ જાણીતું છે। આ ચંદ્રઘંટા દેવી એ સિંહના વાહનવાળા છે, દશભુજા છે, अनेक प्रचंड शस्त्रों थी युक्त छे। एमनी घंटा दुर्भावनाओनो नाश करे छे। नाद ब्रह्मनी जाने के तेनाथी अनुभूति थई छे। चालो चालो आ नाद अने दिव्य शब्द आयो त्यारे श्रुतिना मंत्र ने पण आपणे भूलीए सांभळीए। आ संदर्भमां देवी अथर्वशीर्ष नो आ मंत्र जोईए।

अर्थात प्राण रूप देहोए जे प्रकाशमान वैखरी वाणी ने उत्पन्न करी एने अनेक प्रकार थी हा लोको बोले छे। ए कामधेनु तुल्य आनंददायक अन्न तथा बल अपनारा वाक्रूपिणी वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतियोथी संतुष्ट थयेला अमारी पासे पधार। ओम चंद्रघंटाय नमः। अने आ साथे विश्व राष्ट्र अने समष्टिना कल्याण मंगल माटे आपणे दुर्गाजीनी वंदना करीए।

हे शरण आपणारा जगद्व्यापिनी विश्वरूपा दयामयी माँ दुर्गे, आपना चरणारविंद जगत्थी वंद्यमान होइश। हे जगत्तारिणी दुर्गे, आप अमारू सर्वनु रक्षण करो।

नमस्ते जगत्तारिणी त्राही दुर्गे। हे माँ दुर्गे, प्रचंड अने अदम्य लीलाओथी बधाय शत्रु दानवोने जड़ मूळ थी आप उखेड़ी नाखनारा छो, दुखों माथी तारनारा। हे दुर्गे, तमोज अमारी एक गति आधार छो, अपने प्रणाम, अपने माँ हमारा वंदन। दुम दुर्गायै नमः। अथ विश्व

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

अपनी सुरीली परंपरा को निभाते हुए वीनस वर्ल्ड वाइल्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड आपकी मनपसंद म्यूजिक कंपनी अपने चाहने वाले संगीत रसिकों के लिए एक और भक्तिमय उपहार प्रस्तुत कर रही है, जिसके रचयिता हैं जाने माने गीतकार और संगीतकार रवींद्र जैन, जिनकी मनमोहक धुनों और यादगार गीतों को सुनकर आप भक्ति की संगीत धारा में आनंद विभोर हो उठेंगे और आपके रोम रोम में राम लला और श्याम सखा बस जाएंगे।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।